कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद। लेकिन ये झूठ है, मेरी वीरान जिंदगी में एक मुद्दत से फूल नहीं खिले। लक्ष्मी तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई, कहां चली गई? आज 4 बरस से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। दिन बीते, महीने बीते, बरस बीते, मौसम बदलते रहे, लेकिन मेरे दिन नहीं बदले। कहां हो लक्ष्मी, कहां हो तुम कहां हो लक्ष्मी?

इस दुनिया में कौन है जो नहीं नाचता, कोई जरूरत के लिए और कोई दौलत के लिए। और किसी को मजबूरी न चाहती है।

कोई फूलों पे नाचता है और कोई अंगारों पे नाचता है, नौकर मालिक के इशारों पे नाचता है। बेचारा चांद रात भर सितारों पे नाचता है, कोई जमाने के लिए, कोई दिखाने के लिए और कोई यार मनाने के लिए।